दुश्मनी कहाँ से आ गई? इल्लल मुत्तकीन, मगर मुत्तकीन के, यानी जो दोस्त तकवा पर कायम नहीं है उसमें कोई खैर नहीं है। यह कायदा याद रख लें, और तकवा अल्लाह ताला का डर है, तकवा के एहसास अल्लाह ताला का डर है। यानी जो जिस दोस्त में आपको तकवा का रास्ता ना दिखाया जाए उस दोस्त में कोई खैर नहीं है, और वल्लाह झगड़ा होकर रहेगा। और इसमें सबसे पहले कौन शामिल है पता है? गाने बजाने वाले, जनाकार, सूदखोर, सबसे ज्यादा कौन शामिल है? अहले शिर्क, अहले बिदायत व ज़लालात, अहले बिदायत जो है ये इसमें शामिल है सबसे पहले, क्योंकि तकवा कहाँ है? तकवा के एहसास क्या है? तौहीद और सुन्नत है कि नहीं? जब वो नहीं है तो बिदअती सबसे बड़े झगड़ने वाले होंगे क़यामत के दिन, अहले कुफ्र, अहले शिर्क, अहले बिदअ व ज़लाल। वो फिर बाद में सूद खोर, वो बाद में आने वाले हैं, सूद खोर हैं, हराम खोर हैं, जो भी वो बात की बात है। दीन के लिए जो दोस्ती रखना चाहता है, और दोस्ती दीन ही के लिए होनी चाहिए, तो रास्ता एक ही है। क्या है? तक्वा का रास्ता है। तक्वा पर जो दोस्ती कायम होती है वो दोस्ती दुनिया में भी खैर का बायस होती है और आखिरत में भी खैर का बायस होती है। हाफ़िज़ इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने तफसीर में फरमाते हैं, सर अब्दुल्लाह बिन अब्बास से नकल फरमाते हुए कि हर दोस्ती क़यामत के दिन दुश्मनी में बदल जाएगी सिवा मुत्तकीन के। हर दोस्ती, हर गहरी दोस्ती, बल्कि सिर्फ दोस्ती नहीं, हर गहरी दोस्ती, हर बड़ी दोस्ती क़यामत के दिन बदल जाएगी दुश्मनी में सिवा मुत्तकीन के। हदीस में जिसका जिक्र शेख साहब ने किया है, सर अब्दुल्लाह बिन मसूद अन्हु फरमाते हैं, قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم, एक शख्स अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर की खिदमत में हाजिर हुआ। فقال يا رسول الله, अर्ज करते हैं अल्लाह के रसूल सल्लम, كيف تقول في رجل احب قوما ولم يلحق بهم, आप उस शख्स के बारे में क्या फरमाते हैं जो किसी कौम से मोहब्बत तो करता है लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हुई, देखा नहीं है। فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर सल्लम ने फरमाया, المرء مع من احب, इंसान उसके साथ है जिसे वो मोहब्बत करता है। मुत्तफ़क़ुन अलैह, मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है। आप देख लें आप किससे मोहब्बत करते हैं, सहाबा से मोहब्बत करते हैं, सच्ची मोहब्बत करते हैं, दिली मोहब्बत करते हैं, उसकी अलामत क्या है? उसके रास्ते को आप इत्तिबा करें भी एहसान, जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया है सूरह तौबा आयत नंबर 100 में, वल्लज़ीन तबअहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। और एहसान की इतबा आप छुपा नहीं सकते, और सिर्फ ज़ुबान का कौल हो ही नहीं सकता, कौल भी, फ़ैल भी, ईमान भी, अकीदा भी, तकवा भी, आपका अमल सब उसमें शामिल है। ये इतबा भी एहसान है। अगर आप दुनिया में ऐसे हैं, मनहज सलफ़ पर कायम हैं, तो आखरत में उन्हीं के साथ होंगे। ये अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर सल्लम का फरमान है, अल्लाह ताला का वादा है। दूसरी हदीस में سيد انس رضي الله عنه بيان فرماته ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعه, ایک شخص آیا اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور قیامت کے بارے میں سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی, فقال متى الساعه, قیامت کب قائم ہوگی, قال وماذا اعددت لها, اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی تیاری کیا کی ہوئی ہے, सवाल तो क़यामत के सवाल तो बहुत बड़ा है, क़यामत कब आएगी, उसका कोई तैयारी भी की है कि नहीं, किसकी तैयारी है? क़यामत के लिए। قال لا شيء, शख्स अर्ज़ करता है कि कुछ तैयार नहीं किया, إلا मगर أن أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم, मगर मैं अल्लाह ताला से और अल्लाह ताला के प्यार पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत करता हूँ। فقال أنت مع من أحببت, बस तुम उन्हीं के साथ हो जिसे तुम मोहब्बत करता है। قال انس, سر انس رضي الله عنه فرماتے ہیں, فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم انت مع من احببت, فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ ہمیں خوشی نہیں ملی جب ہم نے یہ سنا اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا انت ما من احببت، یعنی سب